सतनाम श्री एक ओंकार सतनाम करता पुरुख निर्भाओ निर्वैर अकाल मूरत अग्नि सह भंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच

0: अर्प अर्पावा कोई मेलै प्रभ मिलथे सब तन मन अर्पव अर्प अरापाओ कोई मेलै प्रभ मिलथे।
1: तीन पाठ साध संगत जी स्वरूपां च कोई बाला फर्क नहीं, जिवें आप जी दर्शन करोगे सो ध्यान दे नाल तिन्ना इना अर्प पहला है अरपो दूजा अरप तीजा अरापो सो तिन्हां नूं ध्यान दे नाल जिवें ज्ञानी जी ने उचारण किया है सब तन मन अरपो सब तन मन अरपो अरप अरापो कोई

0: है पर थोड़ा जा जिदा संबंधक रूप दे विच उचारण करना पै कन है
1: ता का कोई अपर ना सकै जाकी भगत मेरा प्रभ मन
0: अपर पाठ कस के करना एड़े ते अदक दा प्रभाव दे के ता को कोई अपर ना सकै जाकी भगत मेरा प्रभ मन है।

0: छक्का एक ही बोलना, छक्का पहला नहीं कहना, छक्का एक। हां जी,
1: कल्याण भोपाली महला चौथा।
0: साध संगत जी, कल्याण राग अलग है ते भोपाली राग अलग है, पर इन्हां दोवां नूं मिश्रित करके गरीब नवाज तो चौथे पातशाह जी ने शब्द उच्चारण किया है। दो रागां दा सुमेल ए साध संगत जी गरीब नवाज कृपा कर रहे हन।
1: एक

चिंता मने पाठ करना। साध संगत जीओ, जिवें एक कल्याण राग है ना, कल्याण आप एक राग है ते भोपाली ओदी एक रागनी है जिहड़ी साध संगत जीओ जिन्हू सवेरे जदों गुरु के प्रेमी गाउंदे हन ना उन्हां दा रात दे पहले पैर च जदों 9 बजे तों बाद विच रात दा पहला पैर 6 बजे तों बाद विच 6 तों 9 दे विच पहला पैर हुंदा इस राग नू कल्याण दे विच भोपाली रला के क्योंकि जिवें अगे आपां जा के रागमाला च पढ़ना है के 6 राग ने फिर उन्हां दी अगे स्त्रियां हन उन्हां दे बच्चे हन पूरा परिवार 84 जाणियां दा गरीब नवाज 5वें पातशाह महाराज जीआं ने रागमाला बाणी दे विच दस्या है। सो साध संगत जी गरीब नवाज सच्चे पातशाह महाराज जीआं ने जिहड़ी किरपा कीती है ये 2 राग कट्ठे कल्याण राग दी रागनी भोपाली दे नाल रला के बख्शिश कीती है।

0: मान मन रसक रसन नाम जपत तह पाप खंडली जोग जुगत ज्ञान भुगत सुरत शब्द तत् बेते जप तप अखंडली ओत पोत मिल जोत नानक कछु दुख ना डंडली कल्याण महला पंजवा कौन विद ताकि कहा करो तरत ध्यान ज्ञान शस्त्रज्ञा अजर पद कैसे जरो रहाओ बिसन महेश
1: शस्त्रज्ञा सस बोल के त्रज्ञा चरना चरारा लागे शस्त्रज्ञा इदा उचारण नहीं करना शस्त्रज्ञा जिवें उचारण किया गया है। हां जी
0: बिसन महेश सिद्ध मुन इंद्र।

तुझ बिना प्रभ किछु ना जानो, सर्व युग मह तुम पछानो, हर मन बसे निसवासरो, गोबिंद नानक आसरो। कल्याण महला पंजवा,

0: राम गुर पारस परस करी जय, हम निर्गुणी मनूर अत फीके, मिल सतगुर पारस की जय। रहाओ सुरग मुक्त बैकुंठ सब बांछै, नित आसा आस करी जय। हर दर्शन के जन मुक्त न मांग है, मिल दर्शन तृप्त मन तीजै। माया मोह सबल है भारी, मोह कालख दाग लगी जय। मेरे ठाकुर के जन अलिप्त है मुक्ते, ज्यो मुरगाई पंक ना पीजै। चंदन वास पयंगम वेड़ी, किव मिलिय चंदन लीजै। काढ़ खड़ग गुर ज्ञान करारा, बिख छेद छेद रस पीजै। आन आन समधा बहुकीनी, पल बै संतर भस्म करीजै। महा उग्र पाप साकत नर कीने, मिल साधु लूकी दीजै। साधु साध साध जन नीके, जिन अंतर नाम तरीजै। परस निपरस भय साधु जान।
1: हां जी, परस निपरस पाठ ही करना, परसन परस स्वरूपां च छापिया मिलदा है। परस देरा परसन दा नन्ना है, ओ दूसरे परस नाल जोड़ के परस निपरस भय साधु जान।
0: जान हर भगवान दिखी जय, साकत सूत बहु गुरजी भरिया। क्यों कर तान तनी जय, तंत सूत किछ निकसै नाही। साकत संग ना कीजै, सतगुर साध संगत है नीकी। मिल संगत राम रवीजै, अंतर रतन जवे हर माणक। गुर किरपा ते लीजै, मेरा

नाम श्री सुखमणी साहिब जी दे पाठ, फिर आसा जी दी वार, जां संपूर्ण पंज ग्रंथी दा नितनेम करदे, होर बेअंत बाणियां दा नितनेम करदे हन। गुरु के सिखो, सतगुरु जी दी बाणी दे विच बहुत ज्यादा रस है। गुरबाणी मीठी अमृत धार, जिन पीती तिस मोख द्वार, ओनू मुक्ति दा द्वारा प्राप्त हुंदा है। ते मुक्ति दा द्वारा प्राप्त कित्थों हुंदा? सतगुरु जी दी संगत दे विच आउंदे रहिए, ते संगत करदिआं करदिआं, बाणी पढ़दिआं, कथा कीर्तन सरवण करदिआं, सेवा सिमरन करदिआं करदिआं, मुक्ति दा द्वारा खुलदा है। सतगुरु जी नूं बेनती करिए।

प्रभाती महला पहला। जय कारण वेद ब्रह्म उच्चरे शंकर छोड़ी माया। जय कारण सिद्ध पय उदासी देवी मर्म ना पाया। बाबा मन

माया मोह कटाई, बिन गुर बूडो ठौर ना पावे, जब लग दूजी राई, एहन सजिया देख संभाले, सुख दुख पुरब कमाई, कर्महीन सच भीखिया मांगे, नानक मिले वडाई, प्रभाती महला पहला, मस्त करो मूर्ख जग कहिया, अधिक बकाओ तेरी लिव रहिया, भूल चूक तेरे दरबार, नाम बिना कैसे आचार, ऐसे झूठ मुठे संसारा, निंदक निंदे मुझे प्यारा, रहाओ जिस निंदा है सोई बिद जाने, गुर के सबदे दर निशाने, कारण नाम अंतरगत जाने, जिसनो नदर करे सोई बिद जाने, मैं मैलव उज्जल सच सोए, उत्तम आख ना ऊंचा होए, मनमुख खूल महा

सजाए जग खोटो सच निर्मलो गुर सबदी विचार ते नर विरले जानी अहे जिने अंतर ज्ञान मुरार अजर जरै निजर चरै अमर आनंद स्वरूप नानक जल कौ मीन सै थे भावै रखो प्रीत प्रभाती महला पहला गीत नाद हरख चतुराई रहस रंग फुरमाए सकाई पहनण खाना चीत ना पाई साच सहज सुख नाम वसाई क्या जाना क्या करे करावे नाम बिना तन किछ ना सुखावे रहाओ जोग विनोद स्वाद आनंदा मत सत पाए भगत गोबिंदा कीरत कर्म कार निज संदा।

हार जप जाप जपो जप माली गुरमुख आवै साध मना रहाओ गुरु उपदेश साच सुख जाको क्या तिस उपमा कहिए लाल जवेहर रतन पदार्थ खोजत गुरमुख लहिए चीने ज्ञान ध्यान तन साचो एक शब्द लिव लावे निरालंब निरहार निह केवल निरभौ ताड़ी लावे सायर शब्द भरे जल निर्मल उल्टी नाव तरावे बाहर जातो ठाक रहावे गुरमुख सहज समा

हम बारिक गुर अगम गुसाई गुर कर कृपा प्रतपाल बेख पौजल डुबदे काढ लेह प्रभ गुर नानक बाल गोपाल प्रभाती महला चौथा एक खेन हार।

0: दुख दे केवल मनुख जी रहे क्योंकि ज्यादा जा गया इन असलियत का थोड़ा बहुत ज्यादा पता चल गया। पर जिमे बनस्पति ते पत्थर रस्ते दे चने पशु भी रस्ते दे चने मनुख भी अजे रस्ते दे चे मनुख दा परमात्मा होना बाकी है भाई प्राप्त मनुख दे हुरिया गोविंद मिलन की ए तेरी वरिया असी सारे ने सारे पड़ाव दे चा जितने चिर तक गोविंद नहीं हो गए रस्ते च गोविंद किवें होई गए प्रभु किवें होई गए। मैं अपने वक्ताओं नूं इत्थे समाप्त करना क्योंकि मैं 10 मिनट ज्यादा लै गया ते होर समय दी मैं उलंघना नहीं करनी। थोड़े नेड़े दूजे गुरुद्वारा साहब दे 118 मैं 2 दिन हाजरी भरनी है 29-9-30 उदों मैं खोलण दी कोशिश करांगा। प्रकृति ने पत्थर नूं बनस्पति बनाया प्रकृति ने बनस्पति नूं पशु पक्षी बनाया प्रकृति ने पशु पक्षी नूं मनुख बनाया हुण प्रकृति मनुख नूं परमात्मा नहीं बनाएगी। मनुख स्वयं कोशिश करे अपना हथे अपना आपे ही काज सवारी मनुख नु स्वतंत्र छोड़ देता है। प्रकृति ने मनुख नु स्वतंत्र कर देता है कर्म लई स्वतंत्र। तुसी आखो नहीं एवी बजे होया फिर सत्संग करन दी लोड़ ही नहीं कथा कीर्तन दी लोड़ ही नहीं स्वतंत्र है। भुखा मर जाएगा शेर घास नहीं खाएगा भुखी मर जाएगी गऊ मांस नहीं खाएगी। ओदा ते खाना पीना भी बजे होया मनुख दा खाना पीना बजे होया ने हजारा तरह के पकवाना दा जन्म दाता है। सिर्फ भारत विच हजारा तरह के खाने ने बंगालियां दा खाना होर गुजरातियां दा होर तमिलनाडु महाराष्ट्र लोगां दा खाना होर पंजाबियां दा होर कश्मीरियां दा होर चाइनीज फूड अलग है यूरोपियन अलग है दुनिया विच हजारा तरह के खाने क्यों मनुख स्वतंत्र है।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio Ferndale, Washington.
2: Need help navigating our ever-changing real estate market? Grudale Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether you're thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Grudale Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at grudalebaudgroup.com.

जपो त एको नामा अवर निराफल कामा अवर काज तेरे किते ना काम मिल साध संगत भज केवल नाम ए रब्बी दौलत ए रब्बी सवात धन गुरु नानक देव जी महाराज सारियां दी झोली च पावे सारियां दियां झोलियां भरन सारियां दी जिंदगी सफल होवे सारियां दा और इत्थों दे मुखी सजणा दा सारियां दा बार बार हार्दिक तौर ते धन्यवाद बोल चुक दी शमा वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

जियो पिंड सब दिसदा देखा जे आख गवाईए जे लोड़े है चंगा अपना कर पुनो नीज सुधाईए जे जरवाना पर हरे जरवेश करेंदी आईए को रहना भरिए पाइए को रहना भरिए पाइए।

पौड़े बिन सतगुरु किने ना पायो, बिन सतगुरु किने ना पाया। सतगुरु विच आप रखे उनकर प्रगटाक सुनाया। सतगुरु मिलिए सदा मुक्त है जिन विच हो चुकाया। उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे सिंह चितलाया। जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता पाया।

पौड़ी सेब की दिस संतोखी जिन सचो सच ते आया ओनी मंदे पैर ना रखे उन कर सुके तो धर्म कमाया कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला नित देवे चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्याई वड्डा पाया।

दीपालोहा मंडला खंडा बिरपंडहा अंडू जेरी जुत पुजा खानी सेत जा सोमत जाने नानका सारा मेरा जनता नाग जन तु पाए कैसा माले सबना जिन करते करना किया चिंता भी करनी ता सो कर

0: महला पहला पर गड्डी लदिए पर ये साथ पर बेड़ी पाइए पर गड्डिए खास पढ़िए है जेते वर्ष बस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती आर जा पढ़िए जेते सास नानक लेखे की गल होर हो में चखना चा
1: पहला लिखल पढ़िया ते ता कड़िया बहुत ही सब पव्या ते तो लव्या

0: काल पूर्ण वर्त्या कल काल बेताल बियो बीज पतले के अब क्यों बेदाल जे को तो कबे रुति हुरत होए नान पाहे बारा को रे रंग ना सोए पैबज खुम चढ़ाइए सनु पतन होए नान पक्ति जे रपे पूरे सोए ना कोए
1: मोहल्ला पहला लब पाप धोए राजा मेहता कूड़ हुआ शिकदार।

0: विचार मूर्ख पंडित हिकमत हुजर संजय करे प्यार धर्मी धर्म करेगा वा वह मंगे मुख द्वार जति सदा वह जुगत न जाने है छड बह करबार सबको पूरा आपे होवे कठ न कोई आखे पत प्रवण पिछे पाइये तो नानक तोलिया जापे
1: जगनान का सच्चा वेखे सोए सबनी छाला मारियां करता करे सोए अगे जात ना जोर है।

0: धुआ पूरा तपे का सत गिर धुआ हो काजुगरा थगन का कूड़ा गैर धुआ हो।
1: पहला शाम कहे सितंबर स्वामी सच में अच्छा सच रहे।

0: नील बस्त्र ले कपड़े पहरे सुरख पठानी अमलकिया
1: चार वेद होए सुचार पढ़े गुणे तीन चार विचार पाव पद कर।

पौड़ सतगुरु बैठों वारिया जित मेरे खसम संभालिया जिनका उपदेश ज्ञान अंजन दिया इन नेत्री जगत ने हालिया खसम छोड़ दूजे लगे डूबे सेवन जा रहा सतगुरु है बोहिता विरलेख ने विचारिया।

0: ब्राह्मण वटे आए कोहे बकरा रिन खाया, सबको आखे पाए हुए प्राणा सटिए फिर पाया हो रे नानक तग न टुटे जे तग हो वै जो।
1: महला पहला नाय मनिए पत उपजे साला ही ससूत दर के अंदर पाइये तग न टूट सपूत। महला पहला तग न इंद्री तग न नारी पल के थुक पवे निदारी तग न प्यारी तग न हथी तग न जेवा तग न की बे तग आया पे बते बड़।

ओडिशा महोदया कृपा करता सही कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनों हुक्म बनाए सी हुक्म ने होवे प्रमाण तक।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पवित्र बाणी ए तुर की बाणी दुखां दा कलेशां दा नाश करन वाली बाणी एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक सारी बाणी सर्व कल्याण करन वाली कल्याण रूप बाणी है। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वल जाति पाईए हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नू दसदे हन के जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा,

विभूते समस्त स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सुधर्मं विभूते सदा सच्चिदानंद सतरंग प्रणासी करिमल कनिंदा समस्त निवासी

0: पर प्रेम बाणी मन मा।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक

सतगुर विचा प्रखी अनकर प्रगट आख सुनाया। सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विचों मोह चुकाया। उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे स्यों चित लाया।

संत बाबा करतार सिंह जी खालसा पिंडरां वाले इन्हां दी बरसी दे संबंध विच जो समागम उलीके गए हन 25 अगस्त तों 30 अगस्त तक उस दे विच पंथ दीआं महान शख्सीतां ज्ञानी दलजीत सिंह जी दमदमी टकसाल ज्ञानी जरनैल सिंह जी ज्ञानी जंगबीर सिंह जी ज्ञानी भुपिंदर सिंह जी दमदमी टकसाल एक गुरमुख प्यारे पहुंच रहे हन ਅਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅਰਦਾਸੀਏ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ

गुरु रूप सत्संग जीओ फतेह प्रवान करने वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धार्मिक पुरुषों ने खास करके धार्मिक लिखारी साहित्यकार विद्वान उन्हां दा ऐसा कहना है कि मनुखां नूं पंज श्रेणियां विच वंडिया जा सकता है, या इंज कह लईए मनुख धार्मिक दृष्टिकोण दे मुताबक पंज तरह दे ही हुंदे ने। ये किस्मां मैं थोड़े सामने रखा और इस विच ये देखांगे आपां कि असी कित्थे खड़े हैं। इन्हां पंजां विच पहली श्रेणी, दूजी श्रेणी, तीजी श्रेणी, चौथी या पंजवें, प्रथम श्रेणी पहली श्रेणी इसनूं वो इस तरह बयान करदे ने। कुछ पूर्ण पुरख जो पूर्ण हो गए, ते पूर्ण कदों होंदा है मनुख जद पूर्ण नाल जुड़दा है। पूरा प्रभ आराधया पूरा जाका नाओ, नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। जितने चिर तक पूरे दी प्राप्ति नहीं, मनुख दा जन्म अधूरा है, जीवन अधूरा है, मरण भी अधूरा है। मरण इस वास्ते अधूरा है, तन ते खाक हो गया, राख हो गया, मन फिर जन्म लेने वास्ते तैयार हो गया। दूजा चोला जुग जुग मेर शरीर का वासना बद्धा आवे जाए। भाई गुरदास जी कहिंदे ने कई जन्मां तों मन वासना वस होके बार बार शरीर धारण करदा रहा है।

वह अहंकार नहीं मरता। शरीर बुढ़ा हो जाता है, वासना बुढ़ी नहीं आती। शरीर बिरध हो जाता है, लोभ बिरध नहीं आता। लोभ सदा जवान लेंदा है, अहंकार सदा जवान रहता है, विकार सदा जवान रहता है, वासना सदा जवान रहती है। अगर शरीर की मौत ही वासना की मौत आती, मैं फिर दोहरावां, इस सत्संग की लोड़ नहीं सी, कथा कीर्तन करन दी ते सुनन दी लोड़ नहीं सी, दान पुन जप तप दी लोड़ नहीं सी। शरीर दी मौत वासना दी मौत नहीं है, शरीर दी मौत अहंकार दी मौत नहीं है, शरीर दी मौत लोभ दी मौत नहीं है। शरीर बिरध हो गया, लोभ ते जवान है, बुढ़ा आंदा ही नहीं। शरीर ते बिरध हो गया, वासना ते बिरध होंदी नहीं, जवान है। शरीर बिरध हो गया, अहंकार ते जवान खड़ा। तो ये जवान वासना अगला जन्म करा देगी, अगला जन्म करा देगी। शरीर मर भी जांदा है, वासना नहीं मरती। शरीर मर जांदा है, लोभ नहीं मरता। भाई साहब भाई गुरदास जी धन गुरु नानक देव जी महाराज दे उच्चारण कीते आसा दीवार दे श्लोक दा इंज खुलासा करदे ने, जुग जुग मेर शरीर का वासना बद्धा आवे जाए, फिर फेर वटाइए ज्ञानी होए मरम को पाए। कोई विरला ज्ञानी इस रमज नूं समझदा है कि शरीर मर जांदा, वासना नहीं मरदी। शरीर मर जांदा, लोभ नहीं मरदा। शरीर मर जांदा, अहंकार नहीं मरदा। तन दी मौत हो जांदी है, मन दी नहीं आउंदी। वो फिर दूसरा तन धारण कर लैंदा। वासना मर गई है, तन दी मौत नहीं। इहनूं कहिंदे ने जीवन मुक्त। अहंकार ते मर गया है, तन अजे जिंदा है। इहनूं कहिंदे ने जीवदिआं जी मुक्त है, मुक्त। कहत कबीर जो हर ध्यावे जीवत बंधन तोरे, सारे बंधन टुट गए। बंधना दे चे नहीं जी रहा। अहंकार का बंधन आंदा, लोभ का बंधन आंदा, वासना का बंधन आंदा, सब तोड़ दिते ने, सब टुट गए। तन की मौत ते नहीं हुई, अहंकार की मौत हो गई है। शरीर ते नहीं मरिया, वासना मर गई है। शरीर ते नहीं मरिया, लोभ मर गया है। बड़ी साधना कीती होनी है, बड़ा जप तप कीता होना है, अमृत वेड़े उठ के बड़ी ध्यान साधना कीती होनी है, उंज ते वासना नहीं मरती, उंज ते लोभ नहीं मरता, सिर्फ तन मर जाता है। प्रकृति एक दिन तन नूं बुढ़ा कर देंदी है, मन नूं बिरध नहीं करदी। प्रकृति एक दिन तन नूं खत्म कर देंदी है, मन नूं खत्म नहीं करदी। जमना जीवना मरना प्राकृतिक है, प्रभु नाल मिलना पूर्ण होना प्राकृतिक नहीं है। प्रकृति तो बाहर आना है। तो हुण मैं फिर दोहरावां, इस चक्कर च ना पैणा। कई इस तरह सोचते रहिंदे ने, जवान बुढ़े होवांगे अमृत छक लवांगे। बुढ़े होंदे होंदे तक वासना होर जवान होवेगी। रोज रोज वासना जवान आउंदी है, बुढ़ी नहीं आउंदी। रोज रोज तन बुढ़ा हुंदा है, रोज रोज लोग जवान हो रहे हैं, बलवान हो रहे हैं, रोज रोज तन कमजोर हो रहा है, निर्बल हो रहा है। रोज रोज अहंकार ताकतवर हो रहा है, रोज रोज तन कमजोर हो रहा है। तन दी मौत वासना दी मौत नहीं है, तन दी मौत अहंकार दी मौत नहीं है, तन दी मौत लोभ दी मौत नहीं है। बच्चे दा तन छोटा है, उम्र छोटी है, वासना छोटी है, लोभ छोटा है, अहंकार छोटा है, जवान है।
हंकार

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: फैमिली केयर फार्मेसी
2: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जां बाय भी कर सकदे हो।
2: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
3: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक
1: जां कॉल किरण एट 604-581-1900।
4: Need help navigating our ever-changing real estate market? Grudel Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether you're thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Grudel Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at grudelbaudgroup.com.

संतपना की है। पैगंबर किसनों कहंदे ने, अवतार किसनों कहंदे ने, पूरन संत किसनों कहंदे ने, फकीरी चीस्त, ये सिर्फ दो शब्दां दे च, दो बोलां दे च इतना वड्डा सवाल। फकीरी चीस्त, फकीरी क्या है, संतपना की है। गुरु नानक देव जी महाराज जवाब देंदे ने, इब्तदाए फकीरी फना अस्त, इंतहाए फकीरी बकास्त। किसे उच्चे आदर्श लई अपने आप नू निछावर कर देना, कुर्बान कर देना, मिटा देना, और हमेशा लई अमर तत् दी प्राप्ति कर लेना, बस इसे नू फकीरी कहंदे। यही संतपना है। इस सवाल जवाब में फिर थोड़े सामने रखा जन्म साखी ने। फकीरी चीस्त, फकीरी की है, फकीर किसनों कहंदे ने, संत किसनों कहंदे ने। उस दिन भी मैं अर्ज कीती सी, संत दिखाई देना एक श्रृंगार है, संत हो जाना एक तपस्या है, मेहनत है, कठोर मेहनत है। संत दिखाई दे जाना ते संत नहीं है, गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे ने, मुर्दा शिंगारिया होया और कुछ भी नहीं है। नाम बिना जेता व्यवहार, जो मेरे तक मिथिया श्रृंगार, ए मुर्दे नु शिंगारिया गया। धार्मिक लिबास ते है, धार्मिक जीवन नहीं है, धार्मिक जिंदगी नहीं है, सिर्फ लिबास ही लिबास। फकीरी चीस्त, फकीरी किसनु कहंदे ने, इब्तिदाए फकीरी फनास्त, इंतहाए फकीरी बकास्त। किसे उच्चे आदर्श लई अपने आप नु कुर्बान कर देना, मिटा देना, और हमेशा लई अमर तत् दी प्राप्ति कर लेनी, बस इसनु फकीरी कहंदे ने। गुरु नानक दे पंजवें स्वरूप धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने अपने जीवन दे राही अर्थ सामने रख दिता है। कहिंदे ने, मनुख नूं तीन घटनावां तो गुजरना पैंदा, जन्म, जीवन, मरण। जन्म होया होवेगा, जी रहा होवेगा, मर गया होवेगा। इन्हां तीन अवस्थावां तो हर एक नूं लंघना पैंदा है। जन्म, जीवन, मरण। दुनिया दे कुछ ऐसे पुरुष ने, इतिहासकारां ने उन्हां दे जीवन दी कथा नूं लिखिया है। जन्म किथे होया सी, मां बाप कौन सन, ए भी नहीं पता। बहुत सारे भगतां दा जीवन, बहुत सारे क्रांतिकारियां दा जीवन लिखण वाले ने, इतिहासकारां नूं पता भी नहीं चल सके उन्हां दे मां बाप कौन सन, जन्म किथे होया सी, कदों होया सी। जन्म दी कोई छाप नहीं है, इतिहास दे जीवन दी छाप है। जो कुछ वो करदे रहे, उस नाल जगत नूं कुछ मिलिया। तो इतिहासकारां ने जीवन दी फिकर की थी, जन्म दी नहीं। फिर कुछ ऐसे ने जिन्हां दा मरना बड़ा महान सी।

मुख अकथ कहानी तो गुरु दा जो मंत्र है इस सोईने दी सोई है और इस दे विच जो मैं अपनी सुरत जोड़ी है ध्यान जोड़े है ए धागा है सुई चलदी रही धागा नाल चलदा रहा मेरा हिरदा प्रभु दे नाल सिलदा गया जुड़दा गया। आम जगत विच देखण विच आया है कि मनुखां कोल सुई ते है धागा नहीं राम राम रटन कर रहे ने ध्यान नहीं है वाहिगुरु दा उच्चारण कर रहे ने ध्यान नहीं है तो सोने दी सुई ते चल रही है तागा नहीं है बिन तागे बिन सुई आनी तागे तो बिना सुई की करे किस तरह सीवेगी किस तरह जोड़ेगी तो धुन देच ध्यान दा जोड़ना शब्द देच सुरत दा जोड़ना मंत्र देच ध्यान दा जोड़ना इंज है जैसे सुई देच तागा जो है परोरना तो इस ढंग नाल जद सुई चलदी है ते नाल तागा चलदा है मनुख दा हिरदा प्रभु नाल जुड़ जांदा है यही आप कह रहे ने सोईने की सुई रुपे का धागा नामे का चित हर सों लागा हरि नाल चित जुड़ गया ते हरि ते आनंद स्वरूप है आनंद स्वरूप नाल जुड़दे ही आनंदमई अवस्था मनुख दी बन जांदी है। गुरु अर्जन देव जी महाराज दा भी फरमान है चित्ते चित मिलाए ता होवे रंग घना परमात्मा दे चित नाल तू अपना चित जोड़ अथा रंग बनेगा अथा सुख बनेगा क्यों कि मित का चित अनूप सो मरम न जाने परमात्मा दा चित अति सुंदर है आनंदमयी है रहस्यमयी है गुण निधान है प्रभु दा ऐसा चित जेदे सारे गुण ने सारा आनंद है सारिया सुगंधिया ने सारा खेड़ा है सारा स्वप्न है जैसे कोई प्रभु दे चित नाल अपना चित जोड़दा है जगत दी सारी स्वप्न नाल उसने अपना चित जोड़िया जगत दे सारे संगीत नाल उसने अपना चित जोड़िया जैसे उस परम संगीत दे नाल ते परम स्वप्न दे नाल चित जुड़दा है मनुख दे अंदर भी परम स्वप्न ते संगीत का जन्म होंदा है मित का चित अनूप सो मर्म न जानई गाहक गुनी अपार सो तत् पछानई चित्ते चित मिलाए त होवे रंग घना हरहा चंचल चोरे मार ता पावे सुख घना चूंकि परमात्मा दे चित दे परम नाद है परम संगीत है उस नाल जुड़दे हां परम संगीत दियां धुनियां मनुख दे अंदर वजनियां शुरू हो जांदियां ने उस दा जिक्र श्री नाम देव जी महाराज अपनी बाणी च इंज करदे ने अणमणिया मंदल बाजे बिन सावन घनहर गाजे बादल बिन बरखा होई जो तत बिचारे कोई मेरे अंदर एक ढोल वज रहा है नामदेव कहंदे ने लेकिन वो चमड़े दा मड़िया होया नहीं है पर वज रहा है अठे पैर वज रहे है बड़े सुर दे च वज रहे है बड़े ताल दे च वज रहे है अणमड़िया मंदल बाजे अज तक दे तमाम सिरमोर भगता ने ऐसा आख्या कि साडे अंदर संगीत दी धुन चलदी है राग दी धुन चलदी है ते राग दे जन्मदाते भी संत लोग ने भगत लोग ने दरअसल परमात्मा की है परम सुंदरता और परम संगीत परम रस परम आनंद परमात्मा नाल जुड़ना परम आनंद नाल जुड़ना है परम संगीत नाल जुड़ना है महान स्वप्न नाल जुड़ना है। ये ठीक है कि प्राण पुराने समय दे वैदिक ऋषियां ने भी जो ईश्वर दे गुण मने ने इस ढंग नाल मने ने सत्यम शिवम सुंदरम वो सत है शिवम वो प्रकाशमान है सुंदरम वो अति सुंदर है सत चित आनंद वो सत स्वरूप है आनंद स्वरूप है सत सुहान सदा मन चाओ गुरु नानक देव जी महाराज कहने ने वो सत है सुहान वो अति सुंदर है सदा मन चाओ वो सदी भी खिड़िया है उसदे चित दे सुंदरता है दैवी गुणा दी स्वप्न है परम संगीत है तो परमात्मा नाल जैसे कोई जुड़दा है परम संगीत नाल जुड़दा है परम स्वप्न नाल जुड़दा है परम आनंद नाल जुड़दा है इस वास्ते नामदेव जी महाराज कहंदे ने कि मेरे अंदर परम आनंद दी छाप लगी है और मेरे अंदर दैवी गुणा दी परम सुंदरता
प्रगट होई है। आफते साफ कहने ने प्रण में नाम देव ना के बिना ना सोहे बती लखना। शरीरक तल ते अगर सुंदरता दे